0: जो पई सुखा सिंह तब्यासी कही बिन मारे हम बचे सो नहीं।
1: जुगो जुग अटल चवर शतर ताकत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ

रहस्य जीवन बारे तन गुरु गोविंद सिंह महाराज कह गए, तन जियो तय को जग में मुक्त हर चित में जुद विचार है, देहे अनित न नित रह जस नाव चढ़ा पव सागर तार है, तीरज ताम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यो जा रहा है, ज्ञान की बडरी मनो हाथ लै कातर तक तुवार बुहार आखो वह गुरु। क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहे मनो ना विसरै तो सहला मरना होए, मरने ते जगत रह जीविया लोड़ै सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे हुक्मै बूझै सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए, इस सदीवी अमर पदवी नू प्राप्त हुंदे ने। तन गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सब नालों पहला दर्जा परमेश्वर दा जे, दूसरा दर्जा सतगुरु दा, ते तीसरा शहीद दा है जिहड़ा सच दी खातर अपने आप नू कुरबान कर देंदा है। ये हमेशा हमेशा लई जिउंदे हन, कोई इन्हां नू मुका नहीं सकेगा। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद, ऐसी शहीद शहादत बारे बार बार बाणी जिक्र आया ऐसे जीवन बारे। कबीर मरता मरता जागमुआ मर पी न जाना कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए, उन्होंने कोई मुका नहीं सकेगा, वो सदा सदा लिए अमर होंदे हन। ऐसा जीवन हम सदके तिना गुरसिखा सतगुरु नो मिले आप गवाया, हम सदके तिना गुरसिखा करण उदासी अंदर माया, हम सदके तिना गुरसिखा गुरमत गुर चरणी चित लाया, हम सदके तिना गुरसिखा गुरसिख दे गुरसिख मिलाया, हम सदके तिना गुरसिखा बाहर जांदा वरज रहाया, हम सदके तिना गुरसिखा आसा विच निरास बुलाया, सतगुर दा उपदेश चढ़ाया। उन्हों का कैसा जीवन सी, धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सबन को मूल उपारण, तन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सोच सी। संता मानो दूता डानो एक कुटवारी मेरी, तन गुरु गोबिंद सिंह के बचना उन्होंने बाबा बिंदा सिंह बहादुर ने इस धरती से साख्यात किया। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह निरोल वरत्या सच जे, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं जे। ऐसा जुलम फिर भी पाने च रह के इतनी सहनशीलता, इतना अंदर शब्द का दीवा जगया सी, इतनी अंदर डोलता सी, ये अमृत की शक्ति का करिश्मा सी। इन्हीं से राजे उपजाऊं राज करने की रीत ने गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, किसी समय इन्हों मैं राजे बनाऊंगा। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने केवल लड़ना नहीं सिखाया, सिख न जितना भी सिखाया राज करना भी सिखाया, राज किवें करीदा। इतने सारे धर्मां दा सत्कार किया जाता सी, ऐसे सिरलत सूरमे अदुती सूरमे दे चरणा ते कोटान कोटान नमस्कार है। उन्होंने जीवन चो अज प्रेरणा लैके संकल्प करिए, जिथे भी अमृत संचार होवे 4 तरीक नूं उस पावन स्थान ते सवेरे 7 बजे शनिवार उपर गैली च महान अमृत संचार हो रहे ने। जे बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां 700 शहीदां नाल तुहानूं दिली प्यार है, अज फिर प्रण करके जाए सारिया ने 4 तरीक नूं केसी स्नान करके इस पावन स्थान से सवेरे 7 बजे पहुंचना। पीवो पहुल खंड तार कोई जन्म सुहेला। तो दूसरा जे मेरा वीर जा मेरी भैन जिन्होंने रोमा की बेदबी की है, जे बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत को अज याद कर रहे हो, फिर अज अरदास करो प्रण करके जायो, अज तो बाद किसी ने एक रोम की भी बेदबी नहीं करनी, सब सूरत रहने, किसी ब्यूटी पार्लर से जाना नाई की दुकान पर नहीं जाना। जे तन तन बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत को अज याद किया, अज प्रण कर जा अज प्रण करके जायो, किसी ने जिंदगी नशा नहीं करना, गुरु की सोच न जीवन अपना एक कर सकी, फिर यह शहादत मनाने का अर्थ पूरा होंगे जिस उन्होंने नक्शे कदम से चलेंगे। सिख जीवन का रोल मॉडल हैं, सिखी सिदक का रोल मॉडल ने तन तन बाबा बंदा सिंह बहादुर। गुरु कृपा करे असी कर सकी। शब्द कीर्तन करते हैं हजूरी अंदर नाची सेवकों पासों हुई भुलों की खिमा के वास्ते शीस बख्शनी, गुरु की मत ते नर करके सेवा हो सके। कि गुरमुख प्यारे शब्द कीर्तन के सत्कार वजो माया पेटा कर गए,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਲਟੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋੜ ਅਦਾ ਕਰਿਓ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਓ ਪੀ ਡੀ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੈਲਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਲਾਨਾ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾਸ ਉਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:45 ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ।

0: गए मशकत का नानक ते मुख उजले किति छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
1: ठूठा खूर तुम पहर मात पिता मरी कीर पा मह कोई ना जानी उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा तुमते हो सो तुमरी गात मेता नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लाई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवै ताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन्न डिठ कीता तनहां प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास सिंह हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराऊं। श्री हर राय श्री हर किशन ते आइया। जिस डिठा सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दे आवै ताई। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब।

साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरा।

सासु सासु प्रभु तुम हैं त्यागो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नीत।

कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार आख मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखी जित दिसै दरबार मुहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे।

चित गुप्त लिख जाण है। लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर।

लख लख गेड़ा आखी अह एक नाम जगदीस ए तराह पत पवड़िया चढ़िया हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

दान है, त्रवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, चूज है, चंज है, अमीक है, रफीक है, तंद है, बंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरश्रीक है, निर्लम

परं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोघी अपुगते नमो जोग जोगे सुरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं पूर्णासी अनुपे रूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धं अगंग ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोच्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदीय भेदीय नामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु है जू है देस हैं पेस हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगीय नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे सुमस्तं प्रसिजे कृपालं सुरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं

अनभूत अंग अभाव अंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी।

गैब लो गैब हैं के अफुल गुनाह हैं के शाहान शाह हैं के कारण कुनेंद हैं के रोजी दहंद हैं के राज करीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र पौन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बुलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रमुक्त विभूत हैं प्रपुक्त प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैवंग स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल काम हैं निर्वाज स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंगाद रूपे नाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रवर्गं त्रवाद्य गंजे अगाधे सुपंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग्य त्रिपुक्त स्वरूप हैं शज हैं शूत हैं कि नरकं प्रणास हैं पृथ्वील प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवंग सदा हैं विपुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं चाचरी छंद भंग हैं अनंग हैं भेख हैं लेख हैं परम हैं कर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं वह हैं भूत हैं तूत हैं नास हैं उदास हैं तंद हैं बंध हैं

अंग संगे अपंगंग विपुते एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं छपै छंद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री

श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख बेद।

वाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन।

मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु

सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज तरयो सिर, काहू ले लेंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है, काहू पुछाह को शीस निवायो। कौ बुतान को पूजत है पस, कौ मृतान को पूजन तायो।

आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरा सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझो चारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अरे आलम।

कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा।

मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भासना परिया रे।

गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास।

दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह।

अपने सतगुर को सद बल जाई, गुर किरपा ते हर मन वसाई, से तनवंत हर नाम लिवलाए।

यो जियो बहुते जन्म प्रमया तन सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जी अवरदाता को नहीं सब सुने लोग सुबाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिने विच माप गवाया जन सचो सच बुझाया जन सचो सच बुझाया।

तनासरी महला तीजा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो धन अखुट ना निखुट ना जाए पूरा सतगुर दिया दिखाए एहो धन अखुट

अपने सतगुर को सद बल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुरपूरै हर धन परगासिया, हर कृपा ते वसै मन आए रहाओ।

गुर प्रसाद वसै मन आए, सब में वसै प्रभ एको सोए। गुरमती घट प्रगट होए,

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे।

हर उपजै मन बैराग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो। हाँ जी

सब तुम बात पिता हम बारिक तुमरी कीरपा मैं सूख कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा पग सगल समग्री तुमरा सूतर तुम ते हो ए सो आग्या तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लईं ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं समराऊं श्री हर आए श्री हर किशन ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दे आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तन्हा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दिते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निवाही तन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है

लाहा कि ना सामी तोला तन जड़ाई अपना लाहा सो सज्जन टोला। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह साहू जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसाहू। जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसाहू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवां सतगुर आयो शरण तुहारी।

लेखा छोड़ अलेखा है छूटा है, हम निर्गुण लेहो उभारी। सद बख्शेंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाचै परयो, राख लेहो एह बारी।

राग एक संग पंच भरंगन संग लप है आठो नंदन। प्रथम राग भैरव वह कर ही पंच रागनी संग उचर ही। प्रथम भैरवी बिलावली पुन आकी गावे बंगली। पुन सलिखी की पही बारी ए भैरव की पाचो नारी। पंचम हरख

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुखते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए। बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए। पुठियां खल्लां लोहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाही। ना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु संगत जीयो आप जी सरदार भगत सिंह जी परमार तिना दी मिठी प्यारी याद दे अंदर पिछले दिनी प्रारंभ हुए श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोगां वेले हाजिर हुए हो उन्हां दे समूह परिवार वल्लों आईयां हुईयां आप संगतां रिश्तेदारां साख संबंधियां दा तह दिल तो धन्नवाद है। आप जीआं ने इस समय ते दर्शन दित्ते ने परिवार दे नाल हमदर्दी प्रगट कीती है सो आप जी सारिआं दा धन्नवाद है। इत्थे ही हुण समाप्ति है जी कड़ा प्रसाद दी देग आप जी नूं बाहरों काउंटर तो ही प्राप्त होवेगी। परिवार वल्लों बेनती है आप जी ने गुरु घर दे लंगर हॉल विच लोड़ मुताबक जल पाणी प्रसादा जरूर छक के जाणा जी। हुण गुरु घर दी नित दी मर्यादा दे मुताबक सोदर रहरा साहिब जी दे पाठ दा समां है। रहरा साहिब जी दे पाठ प्रारंभ होण जा रहे हन सो आप संगतां ने जरूर जल पाणी प्रसादा छक के जाणा। फिर परिवार वल्लों आप सारियां संगतां दा तह दिल तो धन्नवाद जी। आयां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मोर अच्छा निज कर दे करिये सब वैरन को आज संगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जोवर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतर हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरन काल का त्रास निवरिय हू जो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझू करिय हर अच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सा।

जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जीते बदन।

बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संघरो दुष्ट जिते उठ बत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिन के दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सबटारे।